0: रहेगी अब तुम्हें।
1: रुहुनाटा राजोराटाटा सिंकडगलाटा www.livefm.lk